जो न बन पाऊं तो दुख होगा तुझे भी थोड़ा, लेकिन एक बात मेरे बच्चे तुझे याद रहे, लेकिन एक बात

0: वो बोल उठा, धीरे से कहा, नहीं है आप मुंबई में शायद, तभी तो छाता भूल गई।
1: हंस के मैंने ना कह दी, वो था एक मैं थी बस।